0: 世界动荡，救援线上有一群志工型企业家，平日在各自的领域做决策、谈效率、承担风险。急难时，他们也能迅速地将这些专业力转向需要的地方。于是门被打开，行动开始发生。周一到周五人物故事，周末完整的慈善足迹都在风月同天。
1: 欢迎回到新闻现场，这一节新闻要带您关注的是国际消息。委内瑞拉发生了百年强震，这次震央呢是在委内瑞拉北部地区。如果透过这个卫星影像带您看到在地震前后当地明显的差异，地震前您看到这个房子是非常整排列整齐的，而且井然有序，但是在当地强震摇晃过后呢，所有建筑物几乎都是瞬间倒塌，夷为平地，居民看着昔日的家园现在几乎是面目全非。那您从空拍看到地震过后整个北部地区的社区全部都被尘土笼罩，可见当地的受灾面积之广。原先整齐的社区轮廓在强震过后有大量的建筑物是消失在尘土当中，这些明亮的高楼大厦整栋全部倒塌，几乎全被瓦砾堆覆盖。透过这样的卫星画面让人看到是非常的触目惊心。面对委内瑞拉强震的灾情，现在国际社会都纷纷伸出了援手，包括了美国、墨西哥以及西班牙还有卡达等等的国家，都已经派出了专业的救援团队以及重机具进到灾区现场。美国华府更对外宣布他们要放宽对于委内瑞拉的制裁，以便更多的人道救援物资能够进到灾区。您看到这个画面，目前灾区都还是断水断电的状态，世界中央厨房已经挺进到这里头，也为受灾民众发放干粮还有干净的饮用水。
2: 挥舞手巾，用仅存的最后一丝气息对外求援。受困瓦砾堆高处的女子，由于地形不稳，需要专业搜救队仔细研判才能逃出升天。
3: We are already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a bunch of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there.
2: 空拍画面宛如战争过后，各国救难队与人道救援物资正纷纷进入惨遭强震袭击的委内瑞拉。
4: Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela.
2: 除了美国和墨西哥，萨尔瓦多、哥伦比亚、多米尼加以及西班牙、卡达及联合国等均已派出专业搜救队，希望能抢在黄金72小时内救出更多宝贵生命。
5: Estaremos todo el tiempo necesario, horas, días, meses, e incluso si tenemos que ir a Venezuela, nos vamos para Venezuela.
2: 美国迈阿密全市也设立了多个物资收集点，打包饮用水、罐头食物、医疗用品、拐杖和尿布等，准备装车运往委内瑞拉。大爱新闻吴桂珍编译。
1: 这一起世纪强震让外界开始关注到当地的地震风险。如果我们从当地的地质构造来看的话，委内瑞拉呢，它是位处在加勒比板块以及南美洲板块的交界，两个板块呢长时间的挤压错动，蓄累了非常庞大的能量，所以一直都是这地震的活跃区。如果看到旁边的数字，我们回顾的是委内瑞拉近代的强震记录，在今年呢，短短40秒的时间就接连发生了两起规模7.2和7.5的强震，而且震央呢就位在北部的内陆。如果时间再往回推到1900年的时候，当年发生了一起规模7.7的强震，震央是位在北部的近海，临近首都卡拉卡斯。当时呢，造成至少有21个人不幸罹难。至于在最下面的2018年，当年发生的是一起规模7.3的地震，因为是在沿海地区， 而且深层的地震，所以对当地的影响不大，灾情也相对来得少。国际专家就进一步分析了这一次发生的双重强震，伤亡非常惨重，除了规模达到7以外呢，还有三大因素。第一，就是这一次的地震属于浅层地震，地震的能量呢会比较容易传到地表，所以往往呢会造成更直接还有更剧烈的破坏。再加上这一次的震央是位在人口的稠密地区，而且多半都是在半夜的时候发生，民众呢在睡梦中被摇醒，有的人是来不及逃生。再加上当地多半的房屋都是用砖造和混凝土结构的房子，耐震系数是非常的低，专家研判以上的三种因素才会酿成如此惨重的灾害。
6: 民众惊慌逃难，大楼基木起剧烈摇晃，当场坍塌，掀起阵阵尘土。委内瑞拉发生一个多世纪以来最大地震灾情，一分钟内接连发生规模 7.2 与 7.5 的双强震，造成毁灭性破坏，也让国际地质学界高度关注。
7: In the case of these two earthquakes in Venezuela, the source was relatively shallow in the Earth's tectonic plate, means that not only were these earthquakes very large in terms of the total amount of energy released, the so-called magnitude of the earthquake, but they weren't occurring that far down in the Earth, so that a lot of the energy reached the surface in the regions above them.
6: 除了震源极浅，地震临近人口稠密地区也进一步放大灾情。专家也指出，委内瑞拉北部本来就是地震活跃带，首都卡拉卡斯曾多次遭强震侵袭，这次地震则是加勒比板块与南美板块长期应力蓄积最终破裂所导致，并引发连锁触发效应。
8: La falla se activa en un sector inicialmente y eso carga las tensiones.En otro sector de la falla, gatillando la falla siguiente. Entonces hay solamente unos cuantos segundos, ¿no? del orden de 40 segundos de diferencia entre un sismo y el otro, de modo que uno es el gatillante del otro.
6: 此外，美国地质调查所地球物理学家叶克接受 CNN 采访时指出，与加州或日本等地震频繁、建筑耐震规范完善的地区相比，委内瑞拉许多建筑属于未经钢筋补强的砖石结构，面对强震时更容易倒塌，也是造成此次重大伤亡的重要原因之一。专家更警告，余震极有可能让受损建筑面临二次崩塌。
7: There could be quite substantial earthquakes, magnitudes 5 or 6, say.That are still substantially smaller than the main events, but big enough to cause further damage and further loss of life.
6: 救援行动仍在持续，面对大规模建筑毁损与持续余震威胁，委内瑞拉正面临艰巨的搜救与灾后重建挑战。大爱新闻，廖婉编译。
1: 最近在尼泊尔兰皮尼，长期透过慈善、教育和职训等等的方式陪伴在地居民一同成长。时间一久了，大家对于慈济也不陌生，所以最近志工举办了一场联谊活动，邀请了当地的村民、学校还有社会人士一同参与，要一同来见证慈济长期陪伴的成果。
9: 感恩之夜联谊，拉克西米普尔与阿迪亚里两个村117人扶老携幼来参加，而这场活动目的就是向长期支持慈济的村民、学校师长与蓝皮尼地方领袖表达最诚挚的感恩。这次由在地乡亲走入慈济蓝皮尼园区。过去几年以来，志工走透透，以一村一协力方式，透过慈善、教育、职训等方式贴近在地，他们对慈济也不再陌生。
10: We also remember that we don't want them to be greedy. The thing is that we still remember a lot of our team was controlling, saying that sometimes we need to give them biscuit, give them banana in order to attract them. But I still remember we say no. We want to make sure that they come with a sincere heart.When they come with sincere heart, that means they really want to transform, they really want to learn. And I say, we don't mind if the participant is less, no problem. But we know that we have to build the good seed in, within their community. So that is when, at that time, we were very firm.
9: 尤其是米普版的带动，愿意帮助的居民内心都是富有无私。
10: We also thank them of those people that contribute the rice bank. Do you know that Sichi, in fact, we never give them much. We are not going there to distribute things to them and all things. But you see, every month when we do this rice bank and all things, a lot of people, they're willing to contribute. And this is something that I see very touching.
9: 有居民形容此地做的一切让他开了眼界。
11: 我想要当兵的时
12: समाधान
11: गर्न मन लाग्छ त भने मलाई त जति पनि मन लागेछ यहाँ के अरे जुजी वाला मलाई यानी त उ दिएछन् के यहाँले आँखा खोल दिनु भयो नै पहिला त म गरे थिएन तर जुजी वाला जाँदाखेरिमा अब दान गर्न पनि आँखा खोल दिनु भयो हैन मदत गर्न पनि आँखा खोल दिनु भयो हैन अब जे गरेपछि कसैको अनि त केटी केटा रोएपछि कसैको केही भएपछि त्यसमा जो ढङ्ग छ हाम्रो त्यो म गर्न
9: 两年多前，志工走入乌沙奶奶的村庄，她做的改变还包括由荤转素。
11: 哎，奶奶，一个脚底抽筋嘛，一个脚底抽筋。伊妈那猪鸡娃拉长得黑哩呢，妈阿尼都沙卡哈里布尼，妈妈妈苏布尼看提，妈沙布尼看提，哎呐，但是伊阿哩长得黑哩，妈，一个沙卡哈里布尼不会啥个。
9: 这不就是善种子的萌芽吗？在蓝皮尼，此际一村一协力，以感恩为起点，以陪伴为道路。
13: अब ठाउँ त आफ्नै जस्तो लाग्छ, मेलजोल सबै मान्छे त्यस्तै छन्, बरु यही हो, अब हेर्ने बिल्डिङहरु राम्रो अलि बनेछ, लुम्बिनी को हो, कहाँ लुम्बिनी कसैले चिन्नथे, अब उहाँको जन्म भएको कारणले लुम्बिनी प्रसिद्ध भयो, अब धेरै ठाउँका मान्छेहरु आएर यहाँ लगानी पनि गर्छन्, त्यस्तै एउटा संस्था यो पनि हो, अनि यो पनि आएर यहाँ एउटा के गरे काम गरिराखेछ, अनि लाग्छ भने कि अगाडि पनि उहाँले गर्नुहुन्छ काम, हाम्रो यो समाजको लागि पनि गरिराखेछ।
9: 大爱新闻，毕平、拉美什、阿马凯什、张清和、尼泊尔报道。
1: 上联行脚今天从嘉义大林前往到高雄来关心这一波的南台湾淹水灾情，志工也分享接下来即将要进行一波的安心家访。下段新闻带您关心，先休息一下，三分钟广告后回到新闻现场。
14: 你누구야아공주절대안잊어버릴놈이네
15: 母亲离世后，孙女找上素未谋面的阿
14: 잊어버릴놈이네
15: 母亲离世后，孙女找上素未谋面的阿妈
14: 해넘어가면저기반에반갑습니다